कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कज कज गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, दिल में की रात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मुझे छुपाए, तड़पती हूँ मैं आरज़ू मुझे छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम भरी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, शान रह जाए

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, ना पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। बचताना ना

0: ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ರೇಡಿಯೋ ಕುಂದಾಪುರ 89.6 FM.
1: बधाई है बधाई है
2: बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है आज राम जन्म की बधाई.

बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, भर भर के कनक थाल, भर भर के

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा बरस जा ए पवन ओ झूम जा।

तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा घा घटा हाँ बरस जा पवन ओ झूम जा।

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा भाव है घटा बरस जा।